गुरु गरीब निवाज अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तख्त सचखंड दरबार जनिया हाजरिया बरदे होए कीर्तन दे सत्काव संगता लो बेंत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जी मुसना देह अरुखता बख्शनी आसा मनसा संपूर्ण करनी यात्रा सफली करनी।

पीछा कौन जाने गुण तेरे गावे ते ओए गावे सुनते और रे वाहिगुरु गावे ते ओए गावे सुनते और रे वाहिगुरु बिन से बापे घने

संग पयो अप पे संग उठी बंबरण शुही शीस गण सुनियो संबरे संग पयो अप पे संग उठी बंबरण शुही शीस गण छके टोपसी संग कणंग पान दी।

0: को एक बार हो समय लगे बचे शरण में तुर्की सलाह अमरेश की कर पूरा पासा डंका बाजा पे काने कलंका का चबर चक्रवर्ती जबर चक्र रुकते
1: सुविंग भाव सुविंग दास रुकते दुकान प्रणा से दयाल स्वरूप सदांग

त्वा प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक बिदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब था प्यो जह थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद

कई देश देश फिर अंत कई एक ठौर स्थान्त कहूं करत जल मह जाप कहूं सहज तन परताप कहूं बास बन है करंत कहूं ताप तन है सहंत

जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि चिते हरि नभे हरि इहां हरि उहां हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अदुख हरि अद्वैख हरि अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अयंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकर्म हरि।

नाचत फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो ई करत है। चंद्रमत शीतल न सूरज से तपत तेज इंद्र सोन राज भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से न वेद चारी सनत कुमार से तपस्या अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण कित वेद पुराण कित सिमृत समूहन के होए होए बितय है। मोन दी मदार कित

जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई को सुलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से मही बहुत लीप कैसे छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली सरद्रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट बेस पोस दी अनेक दा निवावत है। शीस कहो कहा भयो मल जो पिकाड़त अनेक दंड सो तो ना दंडौत अस डांग अथ दीस कहो कहा भयो रुगी जो पे डर रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आद इस कहो कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस कहो। शीस पटकत जाके कान में खजूर दस मुंड छटकत मित्र बुत रहूं के शोक सौ आंख गोचरी फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमिया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जोक सत शेष वृक्ष न सो माटी गो बछैया बोल पूछ लीज जोक सौ कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ नाचुई करत मोर दादर करत शोर सदा गन घोर गन करुई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक बाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हो जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक सोंगी गहूँ जो किया बैरागी बन का बहू सन्यास भेष बन के दिखावई गहूँ पौन हारी गहूँ बैठ लाए तारी गहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पर लगावे बारी कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओका दहा अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पकाल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर डाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ कंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहत जो पे पाइये ताप नाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो पे पायत अजाप देव पूतना सदीव तुही तुही।

सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो करता करीम सोए रास करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मानबो एक ही के सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानबो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक

कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। कित कछ मछ कित उनको करत भच कित अच वच।

ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है कित गंग बास कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम मैं गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। गैन मैं उड़त कित जल मैं रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे जो आचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर।

कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राज सिंह कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग हूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध से खं कहूँ ब्राह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ

कावक ज्वलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई कूक काव कथत गते कई अग्न होत्र कई पान आहार कई करत कूट मृत को आहार कई करत साक पै पत्र भाछ नहीं तदब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व बरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जगे आद करम कहूं अग्न होत्र कहूं तीत।

यगन होत्र गए देव करम गए करत वीर विद्या विचार नहीं तब दास पायत न पार। कहूं राजरीत कहूं जोग धर्म गए सिमृत शास्त्र उचरत सुकरम न्यौली याद करम कहूं हस्त दान कहूं अश्वमेध मुख को बखान। कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरद चार कहूं करत जच्छ गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान। कहूं पितृ करम कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार गई भजत एक बग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तब तास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तब देश देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत हो मर जा।

छेदचयन् जेह जात न पात न माद पितंग जे रचयंग क्षत्रि छत्रसितंग जेह राग न रेख न रोग भणंग जेह द्वैख न दाग न दुख गणंग जेह अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूप इंद नकेंद नकंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई गीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किये देव देव सराद पितंग।

नपुंसक जाय किए गण किन्नर जा छे भुजंग दिए गज बाजर थादिक पांत गणंग भूत भवेख भवान तुआंग जहे अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा का सपताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली।

चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जय भुजंग रचे।

लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा निथ पान पर जे फोकट धर्म सभा तज है एक चित्त कृपा निध को जप है तुव्यावसागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है।

अगंज आदि देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व सत है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अचिज तेज मानिया सदीव सिद्ध शुद्धता।

एक से एक अभेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेष विश्व भरण है, जिमी जमान के बिके सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो पुराण नीत नीत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आदि देव है कहो सकै सपाइए।

न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरको स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत भेग है, बली रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न बात है, न चित्र

न गर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपी नराधपी करंत सेव है सदा से तस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आदि जेब

रूप राग नरेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सोधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजे चक्र चिहन न चित्र आद देव उदार मूर्त अगाध नात अनंत आद अंत न जानिए अभिखात देव तुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन के सनंदन पावही न सेब जछ किन्नर मछ मान

सर्व ठौर रहयो विराज धीराज राज प्रवीण जाच गंधर्व देवतानो न भ्रम क्षत्रिय न माहे वैष्णव के बिखय विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भी लभी।

दीन बंध प्रवीण श्री पद सर्प को करतार बरन चेहन ना चक्र जा को चक्र चेहना कार जात पात ना गोत्र गाथा रूप रेखना बरन श्रव दाता श्रव ज्ञाता श्रव भू को बरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन।

अनाथ श्री पद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार देवा देव गंधर्व किन्नर मच्छ कछ अपार भूम का जले थले महमानिये जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट हरता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु।

त्वा प्रसाद दीरघ त्रिभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृत्ते चरासुर मारण पति दौदारण नरक।

आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन मैग मथे दान प्रहार नरक निवारण नद मुदारण उर्द अधे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन आद वृते डावरूड वंगे बर्ब वंगे भुजा फुरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध जमके भूखण दमगे असिध जमके फुंक फनंग जय जय हुसी मैं खासुर मर्दन रम्भक परदन दैद जिनंग चंडासुर चंडन मुंड मिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन तुजा फरंगण फणि फुंकारण जोत जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्द अधे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन पाप विनाशन धरम करे अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सस प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय होशी मैं खासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम तुझे गुंगुरु कमंकण ससृज मंगण फणियर फुंकारण धनम तुझे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय होशी मैं खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अथम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय होशी सब ठौर निवासन बाये बताल कासन ले संकटे निवारण धम उदारण तेज प्रकरण दुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क पितरकण तपत प्रतापण जबत जीवे जय जय होशी सहस्र प्रकरण आद अनिल अगाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी दुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे दूर भुजे दामनी दमंगे के हरलंगे याद अतंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोजन वृतन विमोचन सोच विसोजन कौच कसे दामनी ब्रहा से सुख सरना से सुभ्र

घंट का बिराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग को केल सुन लाजे गिल बिग भाजे सुकूप राजे मत उरंग दुर्जन दल दंजे मंदन रिझे सवैन भजे रूह रणंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रूस रोदन क्रूर प्रत्ये धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुन संजग विदुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद नंगी अगाध गते ब्रलाज बेहंडन चुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण पति उदारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन विश्व विध्वंस सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकाशन सर्वर वरखण दुष्ट प्रदर्खण बितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आद अनाथ अगाध प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष्ट प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन गुमाने ये दुर्प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली तुंद मते अष्टायत चमकण सस्त झमकण दामिन दमकण आद वृते डुक डुकी दमंगे बाघ बबंगे बुजा फुरंगे शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति उदाहरण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंदनानन चारे नरक निवारे पति उदारे मुंड मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन बिडाल वधे सरधार विपरखण दुर्जन दर्खण अतुल अमरखण धनम धुजे धूमराज विदुंसन।

तुम कहो देव सर्वं विचार जिम क्यों आप करते पसार जद बभूतन भय अनंत तव कहो जथावत त्रंड तंत करता करीम कादर कृपा दयाद वह अभूत अनभय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जह नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजता कराए प्रभ एक रूप द्वय के लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय ना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय काल अच्छे स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साध जेह जात पात नहीं भेद भरम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह शत्रु मित्र दो एक सार अच्छे स्वरूप चल पार जानी न जाए जेह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेख कहे नाम तास है कवन जात जेह शत्रु मित्र नहीं पुत्र प्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चयन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल और दंग बिरहा सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजताक जल थल महीब बंधन दुरंत जय नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाए जय पैर पार दीनान दोग दहता उतार कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट

दीनन की व्रत बाल करें नित संधु बार गनी मन गारे बछ पशु नग नाग नारा देव सर्व समय सब को व्रत पारे पोकत है जल मैं थल मैं बल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है।

पार न पाए सके पदमावत भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करो कुरुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देवा देव खपे हंग बेव न बेव लख्यो भ्रम से उभरमाए वेद पुराण गते बुकुरान हसे बथके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सुखिन श्री पदमापत पाए आद अनंत अगाद दुवेक्षो भूत भवेख भवान अभय है अंत विहीन अनाथम अबाद अगाद दुख छिद्र अच्छा है लोकन के करता हरता जल में धल में भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पदमापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय देह भी न स्नेह सबोधन नेह विरक्त गेह अच्छा है जान को देता जान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पदमापत लय है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत उतन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर पाप सम्भूहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सो सो भेट ही के बट बीज बचावे जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब है सिर न्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाहुं को ने तही ने तह वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कते न वेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनाद सनंत ध्यायो ध्यान धरो तह को मन वै जय को अमित तुज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बजहारे भेद न पाए सक्यो अनभेद को खेत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साख न शोक न संग त्यारे याद अनाद अगाध बेगत वेग जप्यो नहीं कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर बेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे वह न्यास करे।

अत्र के चलैया जित छत्र के धरैया छत्र धारियों के चलैया महासत्रण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महा

पूर बिन पार पाव हिंगुला हिमाल ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साध पौन साधना कि तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरक फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मराटा मंगेले तेरे मन सो तपस्या कर दीड़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रोह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मजीन के शेष ने आवे ते पति दे आए दोग दे के दलत है। जिने दोहे ध्यायो दिने पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देव दान को सुरेश दान वान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पाछे बहु जद दाहे चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं विचार पैन पूरण को पावे पारता हिते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानिये। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है या नासी के मानिए। जत रहू न जात जा की बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा के सुछटा के अन्न मानिए। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के कयानिए। तेज हुंकता रहें के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपनों को भूप है के रूप हूं को रूप है को मत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को गुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को बोकत है के वृद्धता की बासी है। जो हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूं को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है न नर है। विश्व को भरण है के अपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार वार हूं को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हसी हलबी देव पूर्वी न पार पावे असदय अनाश है। देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवनाद अद्वै अविनाशी है। अंजन विहीन है।

राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धर यद्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कुल के हंसनी से सिहारू मही रसी हो सना बाद गंगा कैसी धार चली सतो सिंध रूल के पारसी पलाऊ का ढरू पाके सी रामपुर सूरसी सुरंगा वादनी के रही झूल के जम्पासी चंदी कोट चांदनी सी चंदगढ़ गिरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी बूर सी ससी सुरंगा वादनी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदावाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के प्रतंगी तेरे गीत गायत है फकरी कंधारी गोर कखरी कर देचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप अगमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां

दीदार कर रहे हो। गुरु कलगी तार दशमेश पातशाह जी महाराज दियां दे पावन तखत तखत सचखंड श्री हजूर साहिब जी विखे खालसा जी। गुरु कलगी धर साहब जी ने डरे होए सहमे होए लोगों नू एक ये पावन तख्त बख्शिश किया है। जिहड़ा भी कोई भावना दे नाल सचखंड श्री हजूर साहिब जी चल करके आवेगा, जदों इत्थों दे दखणी सिख गुरु के प्यारे भावना दे नाल मल्लाह खेडदे ने अपने कौतक वरताउंदे ने, उत्थे आम कोई डरपोक जा इंसान भी इत्थे आ जावे खालसा जी उहदे अंदर वीरता जुझारता वर्गे गुण प्रगट हो जांदे ने। ये पावन अस्थान सतगुरु गुरु कलगीधर साहिब जी महाराज जिया दियां पावन खेडां दे नाल रचिया होया। इस जरे जरे दे विच कलगीधर दशमेश पातशाह जिया दे पावन दर्शन होंदे ने। को भावना दे नाल देखे तां सही हरेक माई भाई नूं एक वाहिगुरु जी दे रूप जाण करके देखे, भाई गुरु कलगीधर साहिब जी हरेक गुरु के प्यारे सिख विच दर्शन दिंदे ने। सो महाराज जदों असीं अपने हिरदे दे अंदर झात मारदे हाँ इस पावन तख्त उत्ते बैठ करके हिरदे नूं सकूनता मिलदी है, शांति मिलदी है, और संसार दे जिहड़े लड़ाई झगड़े इत्यादिक हन उन्हां तों परे हो करके जिहड़ा आनंद है ये पावन तख्त उपर मिलदा है। सो सतगुरु गुरु कलगीधर साहिब जी दे पावन अस्थानां ते आप दी बड़ी भावना दे नाल सज बैठे हो। गुरु गरीब नवाज सतगुरु धन धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, जाहर पीर जगत गुर बाबा साहेब कमाल धन गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जियां दा अज पावन विआह पुरब है। गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा, मेरे ग्रह आए राजा राम पतारा। सतगुरु धन गुरु नानक देव साहिब जी महाराज, श्रीमान संत ग्यानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी पिंडरां वालियां ने अपनी पावन कथा दे विच 15 जेठ दा जिक्र कीता है कि साहिबे सतगुरां दा पावन विवाह गुरपुरब 15 जेठ नूं आया। पर अज जिवें नानक शाही संमत दे अनुसार कैलेंडर दे अनुसार अज 2 अस्सू है, सो साहिब सतगुरां दा पावन विवाह गुरपुरब आपां बड़ी भावना दे नाल गुरु के प्यारे मना रहे हां। ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਖਾਸ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਿਵਾਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੰਝ ਗਈ ਬਰਾਤ ਗਈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ

अमृत नाम महारस नाम महारस निरपा होए साध संगत मिल साध मिल शरण परे प्रभु शरण में

मंचित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहा जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करया ऊडे ऊढ़ आवे सैको सा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन मह सिमरन करिया।

तेरी बरिया अवर काज तेरै कतै न काम मल साध संगत भज केवल नाम शरण जाम लाग भौ जल तरन कै जन्म व्यर्था जात रंग माया कै रहा जपत

तहे हमारा जौन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कण को शिव गुण सुख दियो सत्रण को पलम बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जा बुध करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा ताको कर पाहन अनमानत महा मूड कश भेद ना जानत महादेव को कहत सदा सिव निरंकार का छीनत नह भिव आप आपनी बुद है जेती बरंत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखान जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काहूं फूल राजा है बैठा काहूं सुमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणघाता जे असुधजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट अंजाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छाछ सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैल हो उबारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता केलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री असुध्वज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन

जब आओ कि आओ धन दान बने अत हीरन मैं तब जूझ मरों दोहरा। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाय सवैया। धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं युद्ध बिचारे दे।

तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर।

जी की फतेह पौड़ी तिथ तू समरथ जिथ कोई नाहे उथ तेरे रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे भाव जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे।

दोहरा नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहे चितलाय, पूरन करो ग्रंथ है तुम करो सहाय, त्रिपंगी छंद श्री काल की उस्तत।

0: पालो अमरला खंडावर पंडा अंडर जीरस दुजा खाणी से जान स्वामी जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए के सम्माले समना जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जाग तिस जवारी स्वास्थ्य से तिस देवाणे पग नानक सचे नाम बेन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख ने किया चंगिया लख गुना प्रवान लख तब तेरता सज बेबान लख सुरत संग्राम प्राण में छुटे प्राण लख सुरत लख ज्ञान ध्यान पुटे पाठ पुराण जिन करते

0: ना पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खपोए खार कूड़ कूड़े नहलगा विसरा करतार किसनाल किचे दोस्ती सब चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियों कूड़ डोबे पूर नानक खान बेनती तुदवाज कूड़ कूड़ महला पहला
1: सचता पर जाने जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मलुत्रे तन करे हच्चा तो हो सचता पर

नारक में शरीर का एक रक्तवा जो जो फलता है ज्ञान बुझता है सजर संतों का त्रमे रथवा त्र त्र जते का जोर रथवा दो पर

चितंबर स्वामी सच में आचे साजरे सबको सुषमा बेर करया भरपूर राम नाम देवा में सुनना ले प्रश जाना तो मुखंतर पाए जोज में है जोर चल चिंदावन का।

कुड़रास कुणावा पार कुड़ बोल करे आहार श्रम धर्म का डेरा दुर्नान कुड़रा भरपूर मत टेका तेड़ दुदिक कह हद शुरू जगत का सा नील वस्त्र पर परवान मले।

0: अगे वत्स्याए पितरी चर करे बढ़िया हदलाल के मुसफिए करे नानक अगे सुमिल जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जो सिर ना बनी आबे बार बार झूठे झूठा मुकवा

पहला सचा फिर सचा बैठा सचा के रखन कोई ना पिटे जाए सचा के जेवा लगा पड़नसला कह तो जाए सचा किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बसंत देवता लण पंजवा पाए किरत ता हवा पाक पवित्र पापी से त्रगड़िया थका पईया तो जितम नाम नाम